मैं गरीब सच टेक तो मेरे सतगुरु पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे सुख टल गुर सेवी है एहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए धन वाहिगुरु साहिब जी।

पर तारा रावण एहो कार तेरा है तारा किन में बिन से करत न लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक मार जवाले सोए ऐसा बूझो परम न भूलो कोए पैरों महला तीजा मैं कामन मेरकंत करतार जिहा कराए त्या करी सिंगार जत पावे ता करे भूग तन मन साचे साहेब जोग राव उस निंदा करे क्या कोई जापे बरते को सोए गुर प्रसादी परम कसाई मिलूंगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक

क्या करिए जा भरपुर समाई तो करिए जे किस होए ते आने तो करिए जे भूल जाने गुर क्या जो होए सब प्रभते तब शिकारा छोड़ चिंत हम सोते प्रभ तू ही ठाकर सबको तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा द्वितीया नास्ते करिया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरों महला पंजवां

झुल झुल पैस पचे जैसे त्रे रांडे, हर के नाम बिना सब झूठ, बिन गुरु पूरे मुक्त न पाईए। साची दरगह सागत मूठ रहाउ, सोई कुचील कुदरत नहीं जाने। लिपे था सो न सोच हर माने, अंतर मैला बहन धोवे। साची दरगह अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ। कबन

एक तिहाय गुरु उपदेश दया संतोख नाम धन निर्मल है थोक कर कृपाली जे लड़लाए चरण कमल नानक नित्याए पैरो महला पंजवां। सतगुरु अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु त्याया गुरपुर डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाव जा का किया सब किच होए तिसका मरण मिटै कोय पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूर्त गुरु तिसका रूप जा के अंदर वसै हर नाम जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान बीस विस्मै जाके मन प्रकाश तिस जन के पार ब्रह्म का निवास तिस गुरु को सद सद करी नमस्कार तिस गुरु को सद जाऊं बलहार सत गुरु के चरण तोए तोए पीवा गुरु नानक जप जप सत जीवा पैराग पैरो महला पंजवा पड़ताल इको ओंकार पड़ताल करती जय को ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रतपाल प्रभु कृपाल कमण गुण गुणी अणक रंग बहुत रंग सर्व को धनी रहाव अणक ज्ञान अणक त्याण अणक जाप जाप ताप अणक गुणत तन तललत अणक धार मुनि अणक नाद अणक बाज निमक निमक अणक स्वाद अणक दोख अणक रोग मिटह जस सुने नानक सेव अपार देव तट है खट है बरत पूजा कवन पवन जत्र करण सगल फल पुणी भैरो अस्पदिया महला पहला कर दूजा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद आत्म राम राम आत्म चिन्ह सगुरु विचारा अमृत बाणी शब्द पछानी दो काटे हो मार नानक हो मैं रोग बुरे जै देखा तने एका बेदन आपे बख्शे सब तुरे रहाओ आपे परखे परखण हारे बहर सुलाख न हुई जिनको नदर पई गुरु मेले प्रभु भाणा सच सोए पौन पानी बसंतर रोगी रोधी रोगी तरत सुपोगे मात पिता माया देह से रोगे रोगी कुटुंब संजोगे रोगी ब्रह्मा विष्णु रुसुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पय से मुक्ते गुर का शब्द विचार रोगी सात समुद्र नंदी खंड पताल से रोग भरे हर के लोक से सास सुहेले सर्बी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन पेक तारी नाना हठी अनेका बेद कतिब करह कहो बपरे नह बूझे इक एका मिठ रस खाए सो रोग भरीजै कंध मूल सुख नाहे नाम सार चलयन मार्ग अंत काल पछताए तीर्थ भरमे रोग ना छूटस पड़िया बाद विवाद भया दुबदा रोग सोगत गवडेरा माया को मोहताज पया गुरमुख साचा शब सलाहे मन साचा तिज रोग गया नानक हरजन अण दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया भैरो महला तीजा कर दूजा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तिन करते एक चल दो पाया अनत बाणी शब्द सुनाया मनुख भूले गुरमुख भुजाया कारण करता करदा आया गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान कहो न छोड़ो हर का नाम राव पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाटी पादे कह आया नाम बिनान पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख देहो गोविंद मुरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए पर विरत न छोड़ो रही समझाए निर्बोध

जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देव नाक है बिना, ना सो है बतीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाय नामे दयानी। दूध पियो गोविंद राय, दूध पियो गोविंदे राय। दूध पियो मेरे मन पति आए, नहीं त कर को बापर साए रहाओ। सोइन कटोरी।

जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरणा कैत नाम दियो एव विचार इन बिल संतो उतरै पारो।

नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ। बिन साधना पाइया रखा संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध होए गुर शब्द सिलाए।

प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंती, प्रभ को सिमरे से पतवंती, प्रभ को सिमरे से जन प्रवाण, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरे से बेमोहता जी, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा विनाशी।

प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबूना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विघासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का

दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत निध वसै, संत प्रताप दुर सब नसै, संत का संग बड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

जिस पावै तिस लै लड़ लाई, थान थंतरिया समाई। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी सलोका।

जे प्रसाद करे पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार व्यवहारी तिस प्रभु को सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुरप्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेख्या बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चला जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत

कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित चित का राखे तैसा तिन नाऊ आपे करन करावण जोग प्रभु पावै सोई फन होगा पसरे हो आप होय अंतरंग लखी न जाहि पार ब्रह्म की रंग जैसी मत दी।

कई कूट पुजारी, कई कूट आचार ब्योहारी, कई कूट पै तीर्थवासी, कई कूट बन भरमे दासी, कई कूट वेद कै स्रोत है, कई कूट तपिसर होता है, कई कूट आत्म ध्यान धार है, कई कूट कब का विचार है, कई कूट नपतन नाम त्यावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कूट पै अभिमानी, कई कूट अंत अज्ञानी, कई कूट किरपन कठोर, कई कूट अभिगात मनिकोर, कई कूट पर द्रव कुहरै, कई कूट पर दुख न करै, कई कूट पर कई कूट माया शरमाहे, कई कूट परदेश परमावै, जित जित लाभ तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पणी बसंतर, कई कोट तिस्पु मंडल, कई कोट सस्य सुर नखत्तर, कई कोट देव दानव इंद्र सतर, सगल समग्री अपने सुतार, नाग जिस भावै तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सद कई, कई कोट पीत प्राण सिमितर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिरजीव, कई कोट गिरी मेर सवरण थी वै, कई कोट चक नृपसाच, कई कोट पूत प्रेत सुकर मृगाच, सबते नेरे सबूते दूर, नानका पलपतरिया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी, कई कूट जन्म जीवै मरै, कई कूट बाजो नी फरै, कई कूट बैठती ही खाहे, कई कूट काले तक पाहै, कई कोट किया तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथ है, कई कोट भय बिरागी, राम नाम संगत लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंत, आत्म मैं पार ब्रह्म हंत, कई कोट दर्शन प्रप्यासु, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाशु, कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जनक हुए आप सुप्रसन्न, नानक दे जन सदा तन तन, कई कूट खाणी अरखंड।

ताकंत न जाने कोई आपे आप नान प्रभु सोई कई कूट पार ब्रह्म की दासु तिन होता तुम प्रगासु कई कूट तत्क व्यक्ति सदा नहार एको नित्र कई कूट नाम रस पीवै मृपै सद सद ही जीवै कई कूट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समा

गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सुनर्क पाती हूँ स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सुहोवत अभिष्टा का जंतु आप उसको कर्मंत कहावै चन प्रेम अर्जुन प्रमावै तन पूम का जो गृह गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्ता के सुख पावै तनमंता हुए कर गरबावै त्रिस्मान कसंग न जावै मानस करमानक उपकरे आस पाल पीतर ताका हुए विनाश सब दे आप जाने बलवंता किनमें हुए जाए बसमंत किसी ना दे आप अहंकारी धर्म राय जिस करी गुवारी गुरप्रसाद जाका मिठे विवान सूजन नानक दरगे प्रवान कूट कर्म करे हों तारी सरम पावे सकली बिरथार है अनक तपस्या करे हंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निद्रवै हर दरगे को कैसे गवै आप उसको जो भला कहावै तिसै पलाई निकनावै सर्व किरण जाका मन होए कौ नागता के निर्मल सोए लब जब लग जाने मुझ देख सो होए तब इसको सुख नाई कोए जाब जाना है मैं किस करता तब लग गर्भ जोन वह फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीता जाब लग मुंह मगन संग माई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सह सखटे लख को उड़तावै तृप्त नावे माया पाशे पावै इनक भूख बिखिया कै करे नै तृपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ पिरथे सब काजै नाव रंग सर्व सुख हुए बड़ पा

आप उदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप किनो आपन विस्तार सब कुछ उसका करने हार उसते पिन कौ कुछ होए थान तरंतर एक सोए अपने चिताव करने हार कौतक रे रंग पारू मन में आपन अपने माहे नानकी कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने विखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने विरने चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटकट सुनी सरवन बखाणी पवित्र पवित्र।

संत के दुखन आरजा कटै, संत के दुखन दमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत हो मलीन, संत के दुखन सूबा तेहीन, संत के हते को रखी ना कोई, संत के दुखन थान प्रष्ट हो, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संसंगनंद कपी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागजू लवै, संतन के दुखन सर्वजुण पाए, संत के दुखन त्रिकजुण कृपाए, संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै, संत के दुखन सब कुशलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुख नीच नचाए, संत दुखी का था को नाही, नानक संत पावे तो विगत पाए, संत का निंदक महातताई, संत का निंदक न टिक न पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तहीना, संत का निंदक दुखियार दीना, संत का निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका भी हुई मुख, संत का दुखी सदा पवित्त, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लगे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महाहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख तटरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी बीते टूटै, संत का दुखी कदे काज ना पहुंचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर ते तो था, जो सासपना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ का शना है, आपन बीज आपे ही खा है, संत के दुखी को वर्ण रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबारू, संत का दुखी इं बिललाए, ज्यो जन्म हूं मछली तरफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पाव किंदनी त्रापै, संत का दुखी छटियो केला, जो वार्त लिखे तमाहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सत मिथ्या करता, किरत निंदक का तुरही पया, नानक तुत पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उचले निरासा, संत के दुख न तुष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, साव कर तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की क्रोध निरात, तुस त्याग सास ग्रास है, सब कुछ वर्त्या तिसका किया, जैसा कृता सा को थिया, अपना के लव करने हारू, दूसर कौन कह बिचारू, जसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन सी सलूक, तजो होसे आनप सुर जड़ो, सिमरु हर हर राहे, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय अष्टपदे, बन के टेक बिथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अगाए।

तप में तपी सारा ग्रसत में भोगी त्याय त्याय भक्ते सुख पाया नांग तस्पुर का कनेत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देवारे वगा है पिता का जन्म का जाने पूता सगल परोए अपने सूता समत ज्ञान त्यार जन दे जन दास नाम त्यावे से।

निर्मल रीता ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवकु प्रभ पालन हारा सेवकी राखे निरंकारा सो सेवक जस्त्या प्रभ तारे नांग सो सेवक सासा समारे अपने जन का परदा ढक अपने सेवकी आपा सर अपने सेवकी सर पर राखे अपने दास को दी वढाए अपने सेवको नाम जपाए अपने सेवकी आप पत रखे ताकि गतमित कोई ना लाखे प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रखे पसुकरे रसकर कोठ लाके सिसा सासना काट आप ताकू राख दे कर हाथ मानस जतन करता पौ पात तिसके करता बिरथे जात मारे न राखे वरना कोई सर्व जिया का राखा सोई ही काहे सूझ करे रे प्राणी जब नानक प्रभ बड़ाणी बारंग बार बार प्रभु जपिए पी अमृत ए मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया दिस किस अवर नाही दिष्टा नाम तन नाम रूप रंग नाम हो सुख हर नाम का संग नाम रस जो

नानक तिस जन कै पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने हा सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख पकार ते हाटे सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख विडपागी हे सतगुर सिख हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै गुर कै ग्रह सेव कुज रहै गुर की आग्या मन मह सहै आपस को कर कशना जनावै हर हर नाम हृदय सत त्यावै मन बेचे सतगुर कै पास तिस सेव कै कारज रास।

अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे खौ सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उत्तर चेंद आसने अग उत्तर अग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोट बेनती करो सा संगागन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित्तवो नारायण।

0: खुले करम कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई करम खुले ने कीर्तन दियां घड़ियां प्राप्त होईयां ने सत्संग जी आ जो घड़ियां हन प्राप्त किन्हां नूं हुंदियां ने जिन्हां नूं बाबा नानक आप दरवाजा खोलदे हन उन्हां नूं इह घड़ियां नसीब हुंदियां ने आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु
0: जिन्हां नूं धन गुरु नानक उंगल फड के गुरु घर लैके आउंदे ने उन्हां नूं इह घड़ियां नसीब हुंदियां ने इह समां नसीब हुंदा है प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत आप जी दी असीस मिल जावे कीर्तन विच रस आ जावे प्यार सहित फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की संगत काफी है आवाज बहुत घट आई है द्वारा असीस बख्शो जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी
0: सब तो पहला दो तीन मिनट आपां सिमरन करांगे उपरंत जिवें गुरु कृपा करनगे आप जी की सेवा करांगे जी सारे रसना पवित्र करो।

दस मिनट बाकी ने, पांच पांच मिनट के दो शब्द संगतां वालों हुक्म होए ने, आओ सारे मिलके शब्दां दी गायन सरण करिए।

सिमरत सब मलक होई गुण निदान भगतन को वर्तन बिरला पावे कोई मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई बौड़ दुख ना होई रहाओ बड़भागी साध संग प्रापत तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूड़ नानक दास बाछै तिन हर नाम हृदय परोई तिन की धूड़ नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई।

दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी संत हो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सबने जाई संत हो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सबने जाई रहाओ तुरकी बाणी आई तेन सगली चिंत मटाई दया

कहो तल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। हुवे सिफत खसम दी नूरी अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टी